0: जनगणना ना प्रथम चरण मा घर यादी अने मकानो नी गणतरी एटले के तमारा मकान नी गणतरी थशे। चालो तमारी भागीदारी थी तेने सफल बनावीए अने विकसित भारत 2047 तरफ एक वधु डगलू भरीए।
1: दिल तमने अपवानी मारी क्या ना छे, लागणियों ने मापवानी मारी क्या ना छे। तू प्रेम आपे के जखमों नी भेट, जे मळे ते स्वीकारवानी मारी क्या ना छे। तारी खुशी माज मारी खुशी रहेली छे, तू जीते दाव तो हारवानी मारी क्या ना छे। तू करी लेजे खात्री कदी मारा प्रेमनी, हथळीमां दिल मुकवानी मारी क्या ना छे। हाथ जालो तो मझधारे ना छोड़ी देशो, मौत सुधी चालवानी मारी

जो कभी नफरत नहीं करता, एक प्यारी सी मुस्कान जो कभी फीकी नहीं पड़ती, एक एहसास जो कभी दुख नहीं देता, और एक रिश्ता जो कभी खत्म नहीं होता। सो ऑल माय फ्रेंड्स, अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे, अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे, तुझे खबर न होगी।

तो रोने में भी शान है, दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है, दोस्त ना हो तो महफिल भी शमशान है। सारा खेल दोस्ती का है मेरे दोस्त, ये सारा खेल मेरी दोस्ती का है मेरे दोस्त, वरना जनाजा और बारात एक समान है। एट द लास्ट डेडिकेट टू ऑल माई कम्युनियल फ्रेंड्स, मुसीबत का सिरप हो तुम, टेंशन का कंप्यूटर हो तुम, आफत का इंजेक्शन हो तुम, पर क्या करे आखिर, क्योंकि दोस्ती का ऑक्सीजन हो तुम। आई लव यू माई

0: हेलो जी, राहुल आ गया अपनी एंट्री पॉइंट पर।
1: ए, राहुल तो यहाँ नहीं है।
2: अरे बॉडी में राहुल यहाँ पर नहीं है, दो मिनट बाद इसकी एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो, जाकर ढूंढो क्या प्लीज।
1: ओह गॉड, मैं अभी आया।
0: श्रुति, श्रुति, राहुल मिला क्या?
3: नहीं मिला।

हेलो हाय नमस्कार वेलकम अगेन ऑन रेडियो बालमपुर 90.4 एफएम अजब गजब वातुमा तुम्हारू स्वागत छे। दुनियानी सौथी ऊंडी नदी जेमा विशाळकाय जहाज डूबी जाय तो पण देखाय नहीं। दुनियाभरमां आवी घणी नदीओ छे जे पीवानुं पाणी पूरुं पाड़े छे, परंतु शुं तमे जाणो छो कि दुनियानी सौथी ऊंडी नदी कई छे? दुनियामां घणी एवी नदीओ छे जे पोतानी आगवी विशेषता धरावे छे। आपणा देशमां 200થી વધુ નદીઓ વહે છે। શું તમે જાણો છો કે દુનિયાની આવી સૌથી ઊંડી નદી કઈ છે, તેની ઊંડાઈ કેટલી છે, અને એની ઊંડાઈ એટલી છે કે તેમાં અનેક જહાજો ડૂબી જાય તો પણ

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
0: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन हर बार हर रोज सुनता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
0: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोवी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
0: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
2: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
0: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
2: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोता आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
0: लेकिन विमलेश जी ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
2: अजी जी, इसका कारण ये है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
2: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
0: जी,
2: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
0: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
2: जी,
0: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
2: जी,
0: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं एक बात और आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे

0: मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
1: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन है स्कू और थुकपा।
1: जी,
0: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है। यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं, ताकि घरों में गर्मी बनी रहे। जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
1: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
0: हाँ, जरूर कीजिए।
1: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है, जिसे विलो कहा जाता है।
0: जी,
1: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
0: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे, मैग्नेटिक हिल,
1: बिल्कुल याद है।
0: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
1: बिल्कुल
0: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
1: जी जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
0: हाँ,
1: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
0: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है, वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सरक रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
1: श्रोताओं, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओं, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
0: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
1: जी
0: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
1: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
1: जी,
0: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
1: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: भारत अर्थात इंडिया।
1: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: भारत अर्थात इंडिया।
3: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
4: The scoop shot, it gets through, it's a big one, it's a huge boundary, it goes wide, through the offside.

0: time. That's it. India win.
1: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
2: हमारे देश के इतने

0: स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
1: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
2: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा, तुम दोनों आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ शाबाश।
1: क्या अभी आपके पास समय होगा?
2: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
1: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
2: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
1: जी वही। सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
2: अच्छा।
1: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
2: और
1: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
2: हाँ, बोलो।
1: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
2: बिल्कुल।
1: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
2: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
1: 5000 वर्ष पहले?
2: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
1: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
2: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
1: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
2: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
1: अच्छा।
2: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
1: जैसे
2: इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
1: वैदिक समूह?
2: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
1: भरत? भरत नाम तो हमने सुना है।
2: अच्छा, भाई भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
1: ओ, भरत। अच्छा, तो ये बात है।
2: हाँ।
1: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
2: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
1: अच्छा।
2: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
1: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
2: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
1: वो क्या सर?
2: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिदू या हिंदू कहा है।
1: फारसियों ने सिंधु को हिदू या हिंदू कहा है, भला ऐसा क्यों?
2: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
1: अच्छा।
2: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
1: है ही नहीं?
2: हाँ।
1: ऐसा कैसे?
2: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
1: ओ।
2: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
1: हिंदू।
2: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
1: तो फिर?
2: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद

0: के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
1: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
0: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
1: अच्छा कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
0: सर ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
1: अरे वाह क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है उसे भारत कहते हैं।
0: अच्छा
1: हाँ।
0: सर आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
1: बिल्कुल,
0: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
1: देखो पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
0: अच्छा
1: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
0: अच्छा
1: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
0: वो क्या?
1: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
0: जम्बूद्वीप?
1: हाँ जम्बूद्वीप, महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
0: जम्बूद्वीप?
1: हाँ,
0: ये नाम भला क्यों?
1: देखो जम्बू का अर्थ होता है जामुन, इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
0: अच्छा
1: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
0: सर मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
1: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है, उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
0: इतने सारे देश?
1: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
0: अच्छा सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
1: बिल्कुल,
0: ये नाम कैसे आए?
1: लगता है सब कुछ जानकर ही मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
0: जी सर।
1: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
0: अच्छा
1: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
0: ओ।
1: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
0: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
1: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
0: ओ,
1: हाँ।
0: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
1: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
0: अच्छा, इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
1: हाँ?
0: और हिंदुस्तान?
1: देखो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया, वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
0: अफगानिस्तान।
1: बिल्कुल सही।
0: बलूचिस्तान।
1: सही।
0: तुर्किस्तान।
1: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
0: सर अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
1: अच्छा?
0: हाँ बिल्कुल।
1: अरे वाह क्या बात है।
0: सर आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
1: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है इंडिया जो कि भारत है।
0: अच्छा
1: हाँ। अच्छा ये बताओ तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
0: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
1: बहुत अच्छे, तो हमारे देश का नाम हुआ भारत जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
0: जी सर।
1: शाबाश। अच्छा आज जो भी तुमने जाना है समझा है

0: उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सबके साथ?
0: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसे लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
4: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
5: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
6: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
7: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
8: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
7: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
8: हाँ पूछो बेटा।
7: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
8: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
6: लेकिन माँ।
8: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
7: जी
8: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
7: अच्छा माँ, ये लो माँ।
8: ला।
6: ओहो, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
7: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
8: क्या मिल गया
7: मुझे? माँ माँ माँ,
8: क्या मिल गया? क्या मिल गया
7: मुझे? मिल गया।
8: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया? जोसेफ क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
7: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
6: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
7: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो। इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
8: कुछ भी तो नहीं।
6: कुछ भी तो नहीं है।
7: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? हाँ उड़ रही है ना?
6: वो तो है मगर
7: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
6: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
7: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें?
6: हाँ
7: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
6: हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ चलो, देखते हैं।
7: ठीक है आओ मेरे साथ।
8: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ स्टीफन। जोसेफ सुनो तो।
5: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे।

0: और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
1: अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
2: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
3: हाँ भाई भीड़ तो है,
4: लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
2: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
3: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
2: हाँ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चल।
5: ना यारे
4: क्या करेंगे, अरे रहने दीजिए, भला कोई चीज उड़
5: नहीं सकता। कुछ हो गया है।
4: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
6: भाई साहब हट जाइए।
2: अरे आ गए, आ गए। यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
3: अरे अरे वो देखो उस सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
2: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ
3: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
2: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
3: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
2: हाँ, और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
3: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
2: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
3: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
2: बहुत अच्छे, देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
3: अरे अरे लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हो।
2: वो देखो वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ।
3: अरे देखो, अरे अरे वो पेड़ों की तरफ। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
0: साथियों ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बत्तख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ऑलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: तमे सांभळी रह्या छो 90.4 FM रेडियो पालनपुर। हूँ प्रियराज सौ बाल मित्रों नु स्वागत करू छू बाल सभा मां।
4: बकरी बहन ने बे सुंदर बच्चा थया इतले घर बांध्या विना चाले। बकरी बहन तो रस्ता वच्चे जाईने बैठा, एवा मां शेरडी ना गाड़ा वालो निकलो। शेरडी ना गाड़ा वालो कहे, ए बकरी खस आई थी, रस्ता मां केम बैठी छे? बकरी बकरी कोने कहे छे? बकरी बहन नथी केवातू? भाई साहब भूल थई गई, बकरी बहन रस्ता माथी उठशो? लो शेरडी नो एक भारो तमने आपू। बकरी बहन कहे, हा हवे हूँ उठीश। शेरडी नो भारो पेला झाड़ नीचे नाखो, त्यार पछी आव्यू गोल नु गाडू। ए बकरी रस्ता मा केम बैठी छे? खसी जा बाजुए। बकरी बकरी कोने कहे छे? बकरी बहन नथी केवातू? भाई साहब भूल थई गई, बकरी बहन जरा बाजुए खसो, बे चार घड़ा गोल ना आपू छू। हा एम करसो तो उठी जाइस, गोल ना घड़ा पहला झाड़ नीचे मुकता जाओ। एटला मा टोपरा ना गाड़ा वालो निकलो, ए बकरी रस्ता वच्चे केम बैठी छे? बाजुए खसी जा। बकरी बकरी शू करे छे? बकरी बहन नथी केवातू? टोपरा ना गाड़ा वालो कहे, भाई साहब भूल थई गई, बकरी बहन जरा खसी जशो? लो तमने बे टोपला टोपरा ना आपू छू। हा हवे उठू छू, टोपरा ना टोपला आ झाड़ नीचे ठालवो। पछी तो बकरी बहने घर बांध्यू, गोड़नी भीतो बनावी, शेरडी ना दांडा करिया, अने छापरा ऊपर टोपरानी वाटकियों ना नड़िया नाख्या। पछी बकरी बहने बच्चा ने कह्यू, गोल केरी भीतलड़ी ने शेरडी केरा दांडा, टोपरिये घर छाया, बच्चा चालो एमा रहिए, माड़ी चालो एमा रहिए। पछी तो बकरी बहन घरना बारना वासी ने चरवा चाल्या। सांजे पाछा आवीने बकरी बहने बारना खखड़ाव्या, एक कौन छे? गोल केरी भीतलड़ी ने शेड़ी केरा दांडा, टोपरिये घर छाया, बच्चा बारना उघाड़ो। बच्चा तो तरत ज समझी गया के माँ आवी छे, इतले तरत ज तेमने बारना उघाड़िया। एक दिवस बकरी बहन चरवा गया हता, ते लाग जोईने वाघ आव्यो, तेने बारना खखड़ाव्या। अंदर थी बच्चा बोलिया, ए कौन छे? पण वाघ ने कही बकरी बहन जेव बोलता आवड़े? बच्चाए कह्यू, जे होय ते जता रहो, तमे कोई मारी मां नथी, अमारी मां आवीने बोलशे तो ज अमे बारना उघाड़ीशू। वाघ भाई तो आ सांभळीने छना मना नासी गया। सांजे बकरी बहन चरीने घेर आव्या अने बारना खखड़ाव्या। एक कोण बारना खखड़ावे छे? बकरी बहने कह्यू, गोल केरी भीतलड़ी ने शेरडी केरा दांडा, टोपरिये घर छाया, बच्चा बारना उघाड़ो। बच्चा माने ओळखी गया, इतले तरत ज तेमने बारना उघाड़िया। બકરી બહેન ઘરમાં ગયા કે તરત જ

0: मर गया, एक और शहीद हो गया। अरे क्या जरूरत थी उमर कैद ले लेने की? अच्छा भला था गले में फंदा डाल लिया।
1: क्यों जी, क्या खराबी है हमारी लड़की में?
0: आपकी लड़की इतनी बड़ी, वैसे आपकी उम्र क्या?
2: नक साबुन का कमाल है ये, और क्या।
1: अच्छा वो आपका
0: हो गया।
1: वैसे वो गले में फंदा डालने की क्या बात कर रहे थे? जब माला डालनी होती है तब क्यों कछुए की तरह गर्दन आगे कर देते?
0: वो क्या है कि इस कछुए को मालूम नहीं था ना कि इस गांव में आप भी हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आपका नाम?
1: बर्बादी।
2: क्या बात है आदी।
0: शादी बर्बादी होती है।
1: अच्छा तुम नहीं सही, लेकिन यहाँ बहुत सारे लड़के हैं जो मेरे लिए हंसते हंसते बर्बाद हो
0: जाएंगे।
1: करेला बैठ के चबाना, तुम और तुम्हारे चेले।
2: आदि क्या कहेगी यार?
3: मुंह मत लगाना आदि, कड़वी चीज है।

0: दादी, असल में मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था।
1: मेरे पिताजी भी तुम्ही को ढूंढ रहे हैं।
0: अरे बाप रे, अरे भाग बे। हस्ती अच्छा है। वैसे मैंने तो सुना था कि गांव की लड़कियां बड़ी सीधी सादी और भोली भाली होती हैं, शर्मीली।
1: काकी इधर आओ।
0: काकी,
1: ये सीधी भी है और शर्मीली भी।
2: नमस्कार।

जितना दूर जाएंगे आप उतना करीब आएंगे मुझे। आंखों की कशिश को अपने पलकों के एतराज से छुपाने की कोशिश ना करें।

मस मोटा पड़कार निवातो, नानकड़ा निर्धार निवातो। दुनिया ने देखाओ नहीं पण क्या कोई है निरखेला अजवाड़ा ने अंधार निवातो। कहानियों में भजवेला बहु अलग अलग किरदार निवातो। तमें जो रहा छो बातो, बातो भी संजय त्रिवेदी।

0: જનગણનાના પ્રથમ ચરણમાં ઘર યાદી અને મકાનોની ગણતરી એટલે કે તમારા મકાનની ગણતરી થશે. ચાલો તમારી ભાગીદારીથી તેને સફળ બનાવીએ અને વિકસિત ભારત 2047 તરફ એક વધુ ડગલું ભરીએ.
1: નમસ્કાર, આપ સુન રહે હૈ રેડિયો પાલનપુર પર એક ગધે કી આત્મકથા જો લિખી હૈ કૃષ્ણ ચંદર જી ને. લાસ્ટ એપિસોડ મે હમ આયે થે કે ગધે કો નયા માલિક મિલ ગયા થા और वो मालिक का नाम था रामू धोबी, जो उसे खरीद कर ले गया यमुना पार कृष्ण नगर में. तो शुरू करते हैं अब आगे. रामू धोबी किसी जमाने में मोहल्ला सुईवालन में रहता था, लेकिन जब उसके बहुत से ग्राहक पाकिस्तान जा बसे और जो शेष रह गए थे वे इतने निर्धन हो गए कि स्वयं अपने हाथों कपड़े धोने लगे, तो रामू धोबी भी वहां से निकल कर यहाँ यमुना पार कृष्ण नगर में आ बसा. यहाँ मुझे बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ा. रामू सुबह उठते ही कपड़ों की गठरिया मेरी पीठ पर लाद कर चल देता और यमुना के किनारे पानी में खड़ा होकर छुआछू शुरू कर देता. दोपहर को उसकी पत्नी खाना लेकर आती थी और कुछ धुले हुए कपड़े मेरी पीठ पर लाद कर लोहा करने ले जाती थी. मैं दिन भर यमुना के किनारे घास चरता रहता या पुल पर से गुजरते लोगों को देखता रहता. दिन ढले रामू फिर मेरी पीठ पर कपड़े लाद कर और स्वयं भी सवार होकर वापस घर चला आता और मुझे एक खूंटे से बांध कर मेरे सामने घास डालकर थकाहारा चारपाई पर पड़ जाता था. सुबह से शाम तक कुछ इसी प्रकार का जीवन व्यतीत होता था. एक खूंटे से दूसरे खूंटे तक, घर से घाट तक और घाट से वापस घर तक. बीच में न कोई पुस्तक आती, न ही कोई समाचार पत्र. संसार में क्या हो रहा है, विज्ञान किसे कहते हैं, सिनेमा क्या होता है, सभ्यता तथा संस्कृति, नृत्य तथा सौंदर्य, इन सब बातों से मीरा तथा रामू का जीवन बिल्कुल खाली था. आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा. कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए हमारे साथ. मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालनपुर.

मैं तो खैर एक गधा था, लेकिन मैं देख रहा था कि रामू और उसके घर वाले और उसके घर के आसपास रहने वाले लगभग एक सा जीवन, बिल्कुल मेरे जैसा जीवन व्यतीत करते थे। कितने अच्छे अच्छे कपड़े उन लोगों के यहाँ धुलने को आते, सुंदर छींटे, सुकोमल फूलदार कैंपरे और बादलों की तरह उड़ते हुए दुपट्टे। लेकिन रामू की पत्नी या उसकी बेटी के लिए एक भी कपड़ा ऐसा नहीं था। शाम को जब यमुना से लौटती तो प्रतिदिन सड़क के किनारे एक नए बने हुए सिनेमा के बाहर दर्शकों की भीड़ देखते, लेकिन रामू केवल सिनेमा की सुंदर विज्ञापनों को देखकर और एक आह भरकर आगे बढ़ जाता। उसका जी तो चाहता था कि प्रतिदिन सिनेमा देखे और उसके साथ दूसरे धोबियों का भी यही जी चाहता था, लेकिन जब वे अपनी जेब में इतने पैसे देखते कि या तो टिकट आ जाए या आटा, तो विवश होकर आटा ले आते। कभी कभी कोई मनचला आटा छोड़कर सिनेमा का टिकट खरीद लेता तो उस दिन घर में बड़ा हंगामा हो जाता। एक बार रामू ने भी ऐसा किया। उस दिन न उसने केवल ताड़ी पी बल्कि सिनेमा का टिकट भी खरीद लिया था और मुझे अपने एक मित्र तांगे वाले के हवाले करके भीतर चला गया था। सिनेमा हॉल के बाहर तीन चार तांगे खड़े थे जिसके घोड़े हिनहिनाकर और जमीन पर सूंघ मारकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। एक घोड़ा जिसका रंग मुश्की था और माथा सफेद और जो किसी प्राइवेट तांगे का घोड़ा था और इसलिए जरा अभिमानी दिखाई देता था, दूसरे तांगे के घोड़े से कह रहा था, मेरा मालिक मार धाड़ की फिल्में बहुत पसंद करता है। ऐसी फिल्म देखकर जब बाहर निकलता है तो खूब जोरों से तांगा चलाने लगता है। मुझे याद है कि एक बार सिनेमा से वापस आते हुए उसने भरे बाजार में मुझे सरपट दौड़ाना शुरू कर दिया था, जैसा कि उसने फिल्म में देखा था। कई आदमी घायल हो गए थे और एक बच्चा तो अस्पताल में मर भी गया था। लेकिन मेरा मालिक बहुत अमीर है, किसी न किसी तरह उसने साबित कर दिया कि वह शराब के नशे में धुत था, इसलिए केवल जुर्माना देकर छूट गया। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। कहीं जाइएगा नहीं,

वेलकम अगेन। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। दूसरा घोड़ा बोला, मेरे तांगे पर जो दो औरतें आई है वे केवल यह देखने आई है कि मधुबाला ने

तरह हाल के अंदर बैठे बैठे मधुबाला के नए पहनावे का नमूना उतारेगी। वहीं पे तीसरा घोड़ा बोला, मेरा मालिक बड़ा इज्जतदार है, वह यहाँ हफ्ते में एक दिन अपनी प्रेमिका को, जो एक गरीब कपड़ा रंगने वाली की बीबी है, सिनेमा दिखाने लाता है। वह अगर चाहे तो उसे नई दिल्ली के अच्छे से अच्छे सिनेमा में ले जा सकता है, मगर उसे अपनी इज्जत का बहुत ख्याल है। मैंने झिझक कर मगर जरा साहस करके उन घोड़ों की बातचीत में भाग लेते हुए पूछ ही लिया, क्यों जी, यह सिनेमा क्या होता है? मेरा प्रश्न सुनकर उन तीनों घोड़ों ने बड़ी घृणा से मेरी ओर देखा, जैसे कहना चाहते हो, गधा ही है ना आखिर। इसके दूसरे ही क्षण वे तीनों हिनहिनाकर हंस पड़े और मेरे प्रश्न का उत्तर दिए भी नहीं, फिर अपनी बातों में लीन हो गए। मुश्की घोड़े ने घंटे की आवाज सुनकर कहा, इंटरवल हो रहा है शायद। जब सिनेमा समाप्त हो गया तो रामू धोबी ताड़ी के नशे में बेसुध मेरी पीठ पर लदा हुआ उसी नई फिल्म के गीत गाता हुआ जो अभी अभी उसने देखी थी घर की ओर चला। इससे पहले मुझे घर का रास्ता बताया था, आज मुझे बताना पड़ा। कई बार तो रामू गिरते गिरते बचा, आखिर किसी ना किसी प्रकार मैं उसे संभाल कर घर ले गया, जहां उसकी यह हालत देखकर उसकी पत्नी ने उसकी खूब मरम्मत की, क्योंकि रामू की फिजूल खर्ची के कारण आज घर में चूल्हा नहीं सुलगा था और बच्चे भूख से बिलक बिलक कर सो गए थे। पति पत्नी में खूब खूब लड़ाई हुई। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा, जो लिखी है कृष्णचंद्र जी ने। कहीं जाइएगा नहीं, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए आरजे अंजलि के साथ रेडियो पालमपुर।

पत्नी कह रही थी, तुमने ताड़ी क्यों पी, सिनेमा क्यों देखा, जानते नहीं थे यह सब कुछ करोगे तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। और रामू हाथ हिला हिला कर सिर झुका झुका कर कह रहा था, खूब पता था, खूब जानता था, मगर मजबूर था। दिमाग में हर रोज कपड़े इस तरह छुआ छू करते हैं कि मालूम होता है दिमाग इनके शोर से फट जाएगा। ऐसे वक्त में ताड़ी पीनो को जी चाहता है ताकि यह शोर सुनाई न दे। सिनेमा क्या हर रोज देखता हूँ, कसम ले लो आज 6 महीने के बाद गया हूँ बिल्कुल मजबूर होकर। जी चाहता था इस गंदी गली की गंदी मोरियों की बू सूंघते सूंघते परेशान हो गया, इसलिए वहां चला गया। क्या बुरा किया, वहां एक सुंदर घर देखा, सुंदर कपड़े, सुंदर नाच, साफ सुथरे बच्चे, औरतें ऐसी जो हमारे मोहल्ले में तो नजर ही नहीं आती। रामू की पत्नी ने उसे जोर से एक धप जमाई। मुआ घर भर को भूखा रखकर तमाशा देखता है, रामू ने कहा, मैं भी तो भूखा रहा हूं, सच कहता हूं पेट की भूख बुरी बला है, लेकिन कभी कभी कोई दूसरी भूख भी ऐसी जाग पड़ती है कि रहा नहीं जाता। क्या हुआ जो धोबी हूं, आखिर हूं इंसान ही, पेट की भूख के सिवा और भूख भी लगती है, ऐसी कि मन भीतर ही भीतर भट्टी की तरह सुलगने लगता है। उस रात मुझे घास नहीं मिली, मगर मैं स्वयं भूखा रहकर भी सोचने लगा कि रामू ठीक कहता है। रामू कोई मेरी तरह गधा तो है नहीं जिसे केवल कपड़े ढोने और 2 वक्त के चारे से ही काम हो। रामू आखिर एक इंसान है जिसे पेट की भूख से अतिरिक्त और भी कई प्रकार की भूखों से वास्ता पड़ता है। अच्छे घर की भूख, अच्छे कपड़े की भूख, सुंदर आकृति देखने की भूख, सुंदर क्षितिज देखने की भूख। कई बार यमुना के किनारे घास चरते चरते मैंने यमुना के पानी में सूरज के सोने को घुलते हुए देखा है और उसके असीम सौंदर्य से उन्मत्त भी हुआ हूँ। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि ठीक उसी समय बेचारा रामू गर्दन झुकाए कमर तक पानी में डूबा हुआ उस क्षितिज के सौंदर्य से विमुख होकर कपड़ों को बराबर कूट रहा है और उसे बिल्कुल मालूम नहीं है कि उसके आसपास सौंदर्य का कितना बड़ा भंडार लूटा जा रहा है। मैं गधा होकर इस सौंदर्य से प्रभावित हो सकता हूँ, लेकिन रामू एक मनुष्य होकर भी इससे आनंदित नहीं हो सकता। आश्चर्य है इस जीवन में, समाज में आज भी लाखों करोड़ों मनुष्य के जीवन गधों से भी तुच्छ है। आप सुन रहे हैं रेडियो।

पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्ण चंद्र जी। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए मेरे साथ आरजे अंजलि के साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

उस रात मुझे स्वयं भूखा रहकर इस प्रकार के बहुत से ख्याल आए, लेकिन इसके बाद बहुत दिनों तक वहां टिकने को न मिला। ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझकर वहां से भाग जाने का प्रयत्न किया हो। हालांकि वहां मुझे बहुत कष्ट था। एक तो समाचार पत्र पढ़ने को नहीं मिलता था, कई दिनों से किसी पुस्तक की शक्ल तक नहीं देखी थी। यमुना पार

आमतौर पर जिन लोगों से वास्ता पड़ता था वे स्वयं इतने निर्धन थे कि पुस्तक नहीं खरीद सकते थे। बहुत से लोग मूढ़ और अनपढ़ थे। यहाँ प्रायः गाली गलौज, झगड़ा आदि इत्यादि रहता था। धोबियों के मोहल्ले में जहाँ मैं रहता था प्रतिदिन किसी न किसी बात पर लड़ाई होती थी। क्रोध धोबी के गधे पर निकलता था या तो फिर अपने बीबी बच्चों पर। दोष किसका होता था? शायद उन परिस्थितियों का जिन्होंने अच्छे भले मनुष्य को पशु बना दिया था। अब आप परिस्थितियों को डंडे से तो नहीं पीट सकते, यह हिंसा होगी, तो चलिए घर के गधे को ही पीट दीजिए। कानून आपको इसकी आज्ञा देता है। रामू के यहाँ प्रत्यक्ष है, मुझे जैसे पढ़े लिखे को बहुत से कष्ट झेलने पड़े, फिर भी मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि रामू एक दयानतदार धोबी था। वह अपने कपड़ों पर बड़ी मेहनत करता था। सुबह से शाम तक अपना घर चलाने के लिए हर संभव प्रयत्न करता था। ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ने को जी नहीं चाहता था। मगर करनी भगवान की यह हुई, जब रामू जमुना में कपड़े धो रहा था, एक मगरमच्छ ने उसकी टांग खींच ली। रामू ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। दोपहर का समय था। पुल के ऊपर से सैकड़ों मुसाफिर गुजर रहे थे। एक रेलगाड़ी गुजर रही थी। पुलिस ने संतरे भी पुल के नाके पर खड़े थे। रामू ने बहुत तेरा शोर मचाया, मगरमच्छ ने एक न सुनी। वह रामू को घसीट कर गहरे पानी में ले गया। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्णचंद्र। कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए हमारे साथ। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

रामू के ग्राहकों को रामू के मरने का अफसोस तो जरूर हुआ, लेकिन कपड़ों के खो जाने का उससे भी अधिक हुआ, क्योंकि रामू और मगरमच्छ की लड़ाई में बहुत से कपड़े नदी में बह गए। कई एक ग्राहकों ने तो रस्मी अफसोस के तुरंत बाद रामू की पत्नी से कपड़ों के लिए तकरार शुरू कर दी। रामू बहुत अच्छा धोबी था, मगर हमारी शफान की साड़ी कौन से बुरी थी, और वो नई साटन की सलवार जो अभी अभी गुलजार टेलर मास्टर ने सिलवाई थी, कहाँ है वो? जरा वह मैले कपड़े की गठरी तो खोलो। मुझे उन लोगों की यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। हम गधों में भी यदि कोई मर जाता है तो हम उसके बीवी बच्चों से ऐसा व्यवहार नहीं करते, लेकिन शायद इसका कारण यह हो कि मनुष्य मनुष्य है। कुछ दिनों में ही रामू की पत्नी और उसके तीन बच्चों की हालत बिगड़ गई। उनके घर में खाने को कुछ नहीं था, फांके पर फांके लग रहे थे। धोबी मोहल्ले के सरपंच ने, जो एक समय से रामू की नौजवान पत्नी पर आंख रखता था, थोड़ा सा आटा और दाल रामू के घर भिजवा दिया और शाम को स्वयं भी ताड़ी पीकर चला आया और रामू की पत्नी से कहने लगा कि वह उसके घर चली चले। रामू की पत्नी ने उसे खूब फटकारा, गालियां देकर घर से बाहर निकाल दी और सिर पकड़कर रोने लगी। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, मालकिन घबराती क्यों हो, सब ठीक हो जाएगा। रामू की पत्नी ने जब मुझे बोलते हुए सुना तो पहले उसे विश्वास ना आया, पर जब मैंने वही बात दोबारा कही तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी ही फटी रह गई, क्योंकि नई दिल्ली से आने के बाद अब तक मैंने किसी मनुष्य से उसकी बोली में बात नहीं की थी और रामू के यहाँ तो इस प्रकार की बातचीत का प्रश्न ही पैदा न हो सकता था। लेकिन जब अब रामू की पत्नी ने मुझे मनुष्य की तरह बात करते सुना तो बिल्कुल घबरा गई। आखिर बड़ी मुश्किल से मैंने किसी न किसी प्रकार से उसे समझाया कि इसमें कोई विशेष बात नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है, विशेष परिस्थितियां थी जिसमें मैंने मनुष्य की बोली सीख ली। मैंने रामू की पत्नी से कहा, मालकिन बेशक मैं गधा हूं, लेकिन इतने दिनों तक तुम्हारे घर का नमक खाया है, अब तुम चिंता न करो, तुम घर में इन तीनों बच्चों को लेकर बैठो, मैं बाहर जाता हूं और देखता हूं कि क्या हो सकता है। अब क्या हो सकता है, रामू की पत्नी ने कहा, कोई हमारी मदद नहीं करेगा, हम गरीब आदमी है। गरीब है तो क्या हुआ, मैंने किंचित गौरव से कहा, अब राज्य हमारा है, जीवन हमारा है, समाज हमारा है, अब हम स्वतंत्र है, जो चाहे कर सकते हैं, तुम चिंता न करो, अवश्य ही कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं आज ही तुम्हारी सहायता के लिए म्युनिसिपल कमेटी में प्रार्थना पत्र लेकर जाता हूँ। कृष्णनगर की म्युनिसिपल कमेटी का मुहर्रिर अपने एक मित्र और हेड क्लर्क के साथ मेज पर रजिस्टर रखे और रजिस्टर पर ताश के पत्ते फैलाए विचित्र प्रकार के मूड में बैठा था। मैं धीरे से उसके पीछे जा खड़ा हुआ और धीमे से बोला, हुजूर बड़ी मुसीबत है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालनपुर

हुजूर, बड़ी मुसीबत है। वे लोग ताश खेलने में इतने मग्न थे कि उन्होंने सब सुनी अनसुनी कर दी, शायद यह समझकर कि मैं उसका कोई मित्र हूँ जो उसके पीछे खड़ा खेल देखकर सहानुभूति प्रकट कर रहा था। मेरी ओर देखे बिना कहा, हाँ भाई देखो ना, अजीब मुसीबत है, कोई चाल समझ में ही नहीं आती। अगर ये पत्ता फेंकता हो तो रंग से कट जाएगा, और यह चलता हो तो इससे बड़ा पत्ता अभी तक नहीं निकला, और अगर यह चलता हो, मैंने बात काट कर कहा, रामू धोबी मर गया। मरने दो यार, मुहर्री ने क्रोध से चिल्ला कर कहा, यहाँ अपना हुक्म का बादशाह मरा जा रहा है, तुम धोबी को चीख रहे हो। फिर एकाएक वह मेरी ओर मुड़ा, जब अपने पीछे किसी मनुष्य के बजाय गधे को खड़ा पाया तो एकदम लाल पीला होकर चपरासी से बोला, अब क्या गधे भी हमारे दफ्तर में घुसने लगे, निकालो इस कमबख्त को बाहर। चपरासी ने डंडा मार कर मुझे वहां से निकाल दिया। वे लोग फिर ताश खेलने लगे। मैं फिर थोड़ी देर के बाद म्यूनिसिपल कमेटी के मुहर्रिर के पास जा खड़ा हुआ। धीरे से दोनों लंबे कान जोड़कर उसे नमस्ते की और बड़े दुख भरे स्वर में कहा, हुजूर वह रामू धोबी। मुहर्रिर ने मुड़कर मुझे देखा, वह कुछ ऐसा बदमाश आदमी था कि बोलते गधे से भी प्रभावित न हुआ। ऐसा मालूम होता था जैसे जीवन भर बोलते गधों से ही उसका पाला पड़ता रहा हो। उसने मेरी ओर देखकर बड़े रौबीले स्वर में कहा, जल्दी बोलो क्या काम है। निवेदन यह है माई बाप कि सेवक रामू धोबी का गधा है। रामू धोबी 3 दिन यमुना घाट पर कपड़े धोते धोते एक मगरमच्छ के हमले का शिकार हो गया। उसकी बीबी और बच्चे भूखे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुहर्री ने चिल्ला कर कहा। मैंने कोई अनाथालय नहीं खोल रखा। मैंने कहा, हुजूर आप घाट पर धोबियों से टैक्स लेते हैं। पुल पर से जब कोई गधा या बैल या कोई जानवर सामान उठाए गुजरता है तो आप उससे चुंगी लेते हैं। आप इतने सारे महसूल और कस्टम वसूल करते हैं और एक गरीब धोबी के भूखे बीबी बच्चों के लिए कोई प्रबंध नहीं कर सकते। क्यों प्रबंध करे, धोबी को मगरमच्छ ने मारा है। धोबी को मगरमच्छ ने मारा है, हमने नहीं मारा। वाह यह भी खूब रही। और वह जो आप घाट पर टैक्स वसूल कर

करते हैं वह किस लिए? घाट टैक्स आप वसूल करें और उसी घाट पर कोई धोबी किसी मगरमच्छ का शिकार हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम कहां जाकर हर्जाना वसूल करेंगे? क्योंकि अगर म्युनिसिपल कमेटी घाट का टैक्स लेती है तो मगरमच्छ से बचाव का प्रबंध भी उसी को करना पड़ेगा। मुहर्रिर बड़ा चालाक था, बोला, धोबियों को चाहिए कि दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर मोल ना ले, वरना उनका वही हाल होगा जो रामू धोबी का हुआ। मैंने कहा, आप बात को उड़ाइए नहीं, साफ साफ बताइए आप क्या कर सकते हैं इस मामले में। आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा बाय कृष्णचंद्र। कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद यहीं मिलेंगे। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालमपुर।

0: वह ऋण ने देखा, मैं किसी तरह उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं, तो उसने जरा नर्म होकर कहा,
1: भाई
0: जहां यह घटना हुई है वह इलाका हमारे इलाके में नहीं है। यमुना का घाट तो दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के पास है, दिल्ली शहर के टाउन हॉल में जाओ। चलो भाई पत्ता।
1: वे लोग ताश खेलने में लीन हो गए और मैंने यमुना पार जाने की ठान ली। पुल पाल करते समय संतरी ने मुझे रोका, बोला,
0: ओ आवारा गर्द गधे, किधर जाता है?
1: टाउन हॉल, मैंने घट से उत्तर दिया।
0: तेरा मालिक कहाँ है?
1: संतरी ने मुझे घूर कर पूछा। मैंने कहा, मेरा मालिक कोई नहीं है, आज से मैं आजाद हूँ।
0: संतरी ने बोला, यह कैसे हो सकता है? आजादी का मतलब यह थोड़ी कि मिल्कियत भी खत्म हो गई। तेरा कोई ना कोई मालिक जरूर होगा जिसका तू हुकुम मानता है।

0: मैंने पूछा, अच्छा बता तेरा मालिक कौन है जिसका तू हुक्म मानता है?
1: हेड कांस्टेबल।
0: और हेड कांस्टेबल का मालिक कौन है?
1: इंस्पेक्टर,
0: संतरी ने बिगड़ कर कहा।
1: और कौन हो सकता है?
2: इंस्पेक्टर से ऊपर डीएसपी, डीएसपी से ऊपर सुप्रिटेंडेंट पुलिस, इस तरह यह सिलसिला वजीर तक जाता है।
0: और वजीर का मालिक कौन है?
2: वजीर को स्टेट बैंक ने तनख्वाह मिलती है, इसलिए स्टेट बैंक उससे बड़ा हुआ।
0: और स्टेट बैंक से बड़ा कौन है?
2: स्टेट बैंक में रुपया होता है ना,
0: संतरी ने क्रोध से कहा।
2: इतना भी नहीं समझते? स्टेट बैंक से बड़ा रुपया हुआ।
0: अच्छा तो रुपये से बड़ा कौन है?
2: रुपये से बड़ा कौन है?
0: संतरी ने मेरा प्रश्न सुनकर सिर खुजाया, कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर मेरी ओर देखकर बोला,
2: रुपये से बड़ा कौन है? यह मेरी समझ में आज तक नहीं आया, तुम बता सकते हो?
0: संतरी ने मुझसे कहा। मैंने कहा, मैं तो एक गधा हूँ, इस कठिन प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूँ। हाँ, अगर तुम मुझे टाउन हॉल जाने दो, क्योंकि मैं रामू धोबी की विधवा पत्नी के संबंध में रुपये की सहायता के लिए वहां जा रहा हूँ। वहां जाकर अगर मुझे पता चल गया कि रुपये से बड़ा कौन है, तो तुम्हें वापस आकर जरूर बता दूंगा, संतरी ने बड़ी अधीरता से पूछा।
2: जरूर,
0: मैंने वायदा करते हुए कहा। मगर तुम इतने बेचैन क्यों नजर आते हो?
2: संतरी ने कहा, क्योंकि अगर मुझे पता चल गया कि रुपये से बड़ा कौन है, तो मैं के यहाँ नौकरी कर लूंगा।
0: आदमी होशियार मालूम होते हो, मैंने संतरी की प्रशंसा करते हुए कहा, और लंबे लंबे डग भरता हुआ यमुना के इस पार आ रहा। घंटों भटकने के बाद आखिर टाउन हॉल मिल ही गया। टाउन हॉल के भीतर घुसते ही मैंने सोचा कि अब से किसी छोटे मोटे मुहर्रिर या क्लर्क से बातचीत करने में समय नष्ट नहीं करूंगा, सीधे चलकर कमेटी के चेयरमैन से मिल लेना चाहिए, और अब के रौब डालने के लिए अंग्रेजी में बात करना ठीक रहेगा। यह सोचकर मैं सीधे इंक्वायरी रूम में घुस गया और क्लर्क से बड़ी मंजी हुई अंग्रेजी में बात करते हुए पूछा, चेयरमैन साहब का दफ्तर किधर है? इंक्वायरी क्लर्क एक गधे को अंग्रेजी बोलते देखकर भौंचक्का रह गया, तुरंत अपनी सीट पर से खड़ा हुआ और बड़े सभ्य स्वर से बोला, हुजूर,
3: हुजूर 15 नंबर का कमरा है, ऊपर लिफ्ट से चले जाइए।
0: उसने एक चपरासी मेरे साथ कर दिया। चपरासी ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा तो सही, मगर चुप रहा। चपरासी ने मुझे लिफ्ट मैन के हवाले किया। लिफ्ट मैन ने बड़ी शिष्टतापूर्वक लिफ्ट का दरवाजा खोला। मैंने लिफ्ट में प्रवेश करते हुए देखा, लिफ्ट के भीतर लिखा था 6 व्यक्तियों के लिए, लेकिन उस समय मैं अकेला ही उसमें सफर कर रहा था। लिफ्ट मैन ने बाकी आदमियों को बाहर ही रोक दिया था। जीवन में पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि एक गधा बराबर है 6 आदमियों के। लिफ्ट मैन ने ऊपर जाकर लिफ्ट रोकी। मैं सीधा दुल्की चलता हुआ चेयरमैन के दफ्तर के बाहर पहुंच गया और बाहर बैठे चपरासी से बड़े रौबीले स्वर में बोला,
2: साहब से कहो मिस्टर डंकी ऑफ बाराबंकी पधारे है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो पालमपुर पर एक गधे की आत्मकथा। अब इससे आगे की बात हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लग रहा है, इसके बारे में हमें जरूर लिखिए। व्हाट्सएप कीजिए 9512996688 पर। हमारे साथ जुड़ सकते हैं मेल के द्वारा radiopalampur@gmail.com। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। दिस इज आरजे अंजलि। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सुनते रहिए रेडियो पालनपुर।

सौम्य तेजस्विनी, लेखक डॉक्टर गिरीश भाई आई ठाकर। आ सौम्य तेजस्विनी पुस्तक में सोमनाथ प्रभास पाटण ना इतिहास नी आध्यात्मिक वार्ताओ संग्रहायेली छे। अने हवे आपणे माणीशुं प्रकरण 5, हरण अपहरण। कोण छे आ बे माथाळो अने द्वारकाना रक्षको कायर थईने જોઈ રહ્યા છે? क्या मरी गया यादवी? अरे क्या गई अजय सेना? द्वारकाना चौक में बलभद्र राम नो क्रोध पूर्ण ध्वनि पड़घाई रह्यो हतो। धरती ध्रुजी उठे छे, पशु पंखीओ पण स्तब्ध थई जाय छे। जोई शू रह्या छो कायरो? क्या छे मारी गदा, मारो अश्व सज्ज करो। क्षणना छठा भाग में ए दुष्ट नु मस्तक धूल चाटतु हशे। क्या मरी गया बधा सैनिको? अने बलराम नो आ क्रोध त्या बधे ज स्वर स्वरूपे गूंजी उठे। एक सैनिक मांड हिम्मत एकठी करीने सामे आव्यो। देव बधा सैनिको यतिनी पाछळ दौड्या छे, एने रोकवा एने पकड़वा, पण शू भायलाओ, एक व्यक्ति आटली सेनाथी नथी रोकाती। धिक्कार, अरे पण कृष्ण क्या छे? आवा समय ए हाजर नथी? अहीं छू मोटा भाई। कृष्णनी वाणीमां आ समय पण कुमाश छे। शू थयुं मोटा भाई, आटला अकळाया छो? थोड़ू तो जाणू छू, आप कहो तो वधु समझाय। एज क्रोध में बलराम बोली उठ्या, काना, आमां समझवानुं कई नथी। ओह कृष्ण, बलराम जेवा अप्रितम योद्धाओनी बहेन, एनु अपहरण? धरती रसाताल थशे। कृष्ण उठाव तारू सुदर्शन दौड़ अने करीना के दुष्ट नो शिरत छेद। पर कृष्ण तो स्वस्थ उभा छे, उपरती होठ पर एक मरमाळु हास्य रचायु छे अने बलराम नो क्रोध वधारे छे। काना विचार शू करे छे? पछी तू पण कायर थई गयो छे के शू? आ योद्धाओनी जेम उठाव तारू सुदर्शन, नहीं तो हूँ मारा हळती आखी पृथ्वी ने उलटावी दऊ छू। कृष्ण कहे छे, अने बहन ने विधवा करूँ एम ज ने? बलराम कहे, कृष्ण आ अवळवाणी नो समय नथी अने तारी चतुराई नो पण समय नथी। हूँ हमणां ज हणी नाखू छू ए अपहरता ने। कृष्ण कहे छे, फरी याद करावू? હવે એ આપણી બહેનનો પતિ છે। તમે સાંભળી રહ્યા છો રેડિયો પાલનપુર પર સૌમ્ય તેજસ્વીના અંશોને। હવેનો વૃતાંત માણીશું આપણે વિરામ બાદ। મસ્ત રહો, વ્યસ્ત રહો અને સાંભળતા રહો રેડિયો।

शिव धनुष्य अनुसंधान जेवी कठोर स्वयंवरनी परीक्षा, कठोर ने कठोर परीक्षा में दस मस्तकधारियों पर अयोग्य ठरावाय जाए तेवी हवे अही आ बहन ने पूछवा आवे कोण। बराबर एज गाळा में कौंते अर्जुन तीर्थधाम करतो करतो प्रभास क्षेत्र में आवी पहुंचो। अर्जुनस तीर्थयात्रायां पर्यटन वन्नीम प्रभु गतः प्रभासम शृणोत मातुल्येम आत्मन। क्या तो अनेक ना मोड़े सुभद्रना वखाण सांभळ्या। आम तो मामा ने दीकरी पण ए समय क्षत्रियो मा एवा लग्नो समाज मान्य हता अने धर्म मान्य पण। जाणे अजाणे एनु चित्त सुभद्रा तरफ खेंचावा माँड्यु। सुभद्रा ने एक वार जोई लेवी तो जोईए ज, एने मळवू तो जोईए ज एवुं मन जाणीने ते पछी तो वात ज शी करवी। कृष्ण ए वात ने जाणी गया ने एमना अंतःकरणे सोनेरी घंटडीओना अवाजे एमने कह्युं के अर्जुन आ बहन सुभद्रा माटे ज योग्य पति छे, एनोज वंश भारत वर्ष ने आगळ वधारवा सक्षम बने। सुभद्रानी कूखे एवी संतति पैदा थाय जे भविष्यमां हस्तिनापुरना शासन ने संभाळवा समर्थ होय, भारतखंडमां धर्मनुं साम्राज्य विस्तारवा सक्षम होय। कृष्णनुं पोतानुं अवतार कार्य पण ए ज हतुं ने। अने कृष्णनी कुशाग्र बुद्धि कामे लागी गई, कपट कला कोविद कृष्णनी योजनाओ आकार लेवा माँडी अने द्वारकानी गलीओमां एक तेजस्वी त्रिदंडी यति एटले के साधु भिक्षाम देही करतो फरवा लाग्यो। ललाट मां तेजनी रेखाओं ने आंख मां वीरतानी आग। अने एक दिवस एने राजमहल मांथी आमंत्रण मळ्युं। बळदेवजी पण अर्जुन रूपे एने ओळखी शकेला नहीं अने भिक्षा पीरसता सुभद्रानी आंखों मळीने आरंभ थयो स्नेहना पवित्र चरणानो। वात ने आगळ माणीशुं आ विराम बाद। त्यां सुधी मस्त रहो, व्यस्त रहो ने सांभळता रहो रेडियो पालनपुर।

जनगणना ना प्रथम चरण मा घर यादी अने मकानों नी गणतरी एटले के तमारा मकान नी गणतरी थशे। चालो तमारी भागीदारी थी तेने सफल बनावीए अने विकसित भारत 2047 तरफ एक वधु डगलू भरीए।

जनगणना ना प्रथम चरण मा घर यादी अने मकानो नी गणतरी एटले के तमारा मकान नी गणतरी थशे। चालो तमारी भागीदारी थी तेने सफल बनावीए अने विकसित भारत 2047 तरफ एक वधु डगलू भरीए।

मस मोटा पड़कार निवातो, नानकड़ा निर्धार निवातो। दुनिया ने देखाओ नहीं पण क्या कोई है निरखेला अजवाड़ा ने अंधार निवातो। कहानियों में भजवेला बहु अलग अलग किरदार निवातो। तमें जोई रहा छो वातो, वातो भी संजय त्रिवेदी।

जनगणना ना प्रथम चरण मा घर यादी अने मकानो नी गणतरी एटले के तमारा मकान नी गणतरी थशे। चालो तमारी भागीदारी थी तेने सफल बनावीए अने विकसित भारत 2047 तरफ एक वधु डगलू भरीए।

0: हीरो करने का भी है।
1: आ योजना थी तमारू घर साचा अर्थ मां सूर्य घर बनी जशे, एटले के लाइट बिल साव जीरो। एटलू ज नहीं, जो जरूरियात करता वधु विजळी पैदा थशे तो तमे तेने ग्रीड मां वेचीने वधारानी कमाणी पण करी शकशो। तो पछी राश एनी जुओ छो, आजे ज रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।

बक्का पालनपुरी न्यू ओला केटले ट्यून रहे मस्त रहे सामल दूर रहे ओनली ऑन 90.4 FM रेडियो पालनपुर कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।